0: एहसास कदे। थैंक यू।
1: सुखविंदर कौर जी तो बाद हुण मैं सदा देण जा रहा जम्मू बस दे साडे शायर हरभजन सिंह अपाशिक जी नूं। हरभजन सिंह अपाशिक जी साडी कामे पलां दे विच आउंदे रहिंदे ने। इस वार ओह साडे विशेष सद्दे दे उत्ते किसानी संघर्ष नाल जुड़ के अपनी एक कविता लेके हाजिर हो रहे ने। हरभजन सिंह अपाशिक जी, तुहाडा दुआबा रेडियो दे हफ्तावारी कवि दरबार दे विच निघा स्वागत है जी।
2: शुक्रिया याब साहब, मेरी अज दी कविता देश दे किसानां नूं समर्पित है। कार ते आग अन्नदाता सड़कां ते आया है, भारती किसान भारत मान दा जाया है। कार ते आग अन्नदाता सड़कां ते आया है, भारती किसान भारत मान दा जाया है। ईमानदारी नाल अपना फर्ज नभाया है, मुनका बहा के मिट्टी चो सोना उगाया है। आई क्रांति हरा इनकलाब ले आया है, पर दित्ते अन भंडार आत्म निर्भर बनाया है। कार त्याग अन्नदाता सड़कां ते आया है, भारती किसान भारत मां दा जाया है। अज अन्नदाता लाचार हो गया है, काले कानूनां दा शिकार हो गया है। निंदनी निर्दयी सरकारी व्यवहार हो गया है। लाठियां बुछारा कुटमार अतिया चार हो गया है। पूजियां पतियां ले डाडा प्यार हो गया है। निरा अहं होंद खातर पेचा फसाया है। कार त्याग अन्नदाता सड़कां ते आया है, भारती किसान भारत मां दा जाया है। देश दे किसानां नूं इधर उधर ना भटकावो, बिना कारण बेलोड़ी बैठकां ना लमकावो। देश भगतां ते देश धरोही लेबन ना लावो, एवें किसान एकता ना अजमावो। किसानी करदे किसानां दा ना ध्यान वटावो, दूर करो सब संसे शंकियां चो ना फस

ऐसे ही तो जरूरी है मीठे वचन, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, उसका जीवन तो है एक शमशान का, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, उसका जीवन तो है।

तो ये जीवन भला है ये किस काम का, जिंदगी का सफर ये सुहाना बने, छोड़ दे तू अगर सारे शिकवे गिले,

सारे शिकवे गिले, खुश है जो सदा उसकी ही मौज में, खुश रहे जो सदा उसकी ही मौज में। दास सच्चा वही तो है भगवान का, खुश रहे जो सदा उसकी ही मौज में। दास सच्चा वही तो है भगवान का, तू सहारा अगर ना किसी का बना, तो ये जीवन तेरा बस।

अति रात तक करना आंदा, अति रात तक करना आंदा, सप्पां दियां सिरियां नप के सौंदा, अति रात तक करना आंदा, सप्पां दियां सिरियां नप के सौंदा। अच हंजू केरे रोवे, अच हंजू केरे रोवे, अन्न दाता संसार दा, आजो पुत्तो आजो बापू तरने च वाचा मारदा, आजो पुत्तो आजो बापू तरने च वाचा मारदा। तेरा मेरा करना छट दो, धर्मा पिछे लड़ना छट दो, तेरा मेरा करना छट दो, धर्मा पिछे लड़ना छट दो। किंज पैने फिर कित्ते भंगड़े, किंज पैने फिर कित्ते भंगड़े, की मतलब हो विसाखी दा, किंज रुआब हंडाउणा दूजे हाथ फड़ाई लाठी दा, किंज रुआब हंडाउणा दूजे हाथ फड़ाई लाठी दा। वास्ता पंजाबीओ, वास्ता पंजाबीओ मां धरती दे दुलार दा, आजो पुत्तो आजो बापू तरने च वाचा मारदा, आजो पुत्तो आजो बापू तरने च वाचा मारदा। बस करो हुण होर नी सहना,

और प्रीत सफरी वालों गाए गए इस गीत तो बाद ही आपां ए कवि दरबार अज इत्थे समाप्त करदे आं। आस करदे आं किसानां दा जिहड़ा संघर्ष चल रहा है कि ओह इस संघर्ष चो जेतू होके निकलण ते उहनां दा जमीन दे नाल जो मां पुत वाला रिश्ता है इसे तरह बनिया रहे। अंत दे विच हरवंत सिंह वालों सारे स्रोतियां ते कवीजन नूं जिहड़ा है आदाब नमस्कार सत श्री अकाल कुदरत खैर करे अलविदा प्यारे दोस्तों आमीन।

0: के तेरे पीछे लड़ियां लड़ाइयां एक ताण के खाक हो गए राहों वाली खाक छान छान के वफा दी मिसाल मारी जाइए मार छाल ओ वफा दी मिसाल मारे जाइए मार छाल पर कच्चा कड़ा सोनी ते चनाव चाहिदा रातां दियां नींदरां चराउण वाली ए नी सानू अगे
1: जी
0: है गया बड़ा सम जानिए मिसालां दस दस के यारी पिछे है जानवार दइए हस हस के।

0: आओ पहली लाइन अगे पिछे होगी तो होगा, वफा दी मिसाल मर जाइए मार छाल, पर कच्चा कड़ा सोनी ते चनाव चाहिदे, रातां दियां नींदरां चराउण वालिए नी सानू, हर एक पल दा हिसाब चाहिदे। हाँ ना, मेरा आल आल वो जिम्मे कहते ना, पिछले दिन मैं शेर बोलिया सी तो ओजला भाई जी कह लगे, कहते भी वो सारे गाने दे विच कहते मकसद तो यह सी भी आप पिछली लाइन बोलनी सी, तो उत्तों
1: जी
0: रेहड़ी लिया उसी धक्के नाल ही ये सुनाउनी सी इन्हें पिछली पिछली
1: जी
0: लाइन। आ भी मैं ना असल मैनू आ भी मैं पिछली लाइन सुनाउन करके
1: जी
0: मैं थोनू हुण ओह गल करन लग गया वा। कहना
1: जी
0: मर जाना चंगा नित मर मर जीण तो, मर
1: वाह।
0: जाना

मर जाना चंगा है मर मर जीण तो, डसके वाले मुकद्दर नू ना रोक हुण पीण तो। बड़ी एक

0: एक खुसरो जी दा जी है
1: क्या बात है जी, क्या बात है जी, बहुत खूबसूरत,
2: बात
1: हर वार दी तरह जी।
0: हमारे।
1: जी
0: हाँ जी
1: थैंक
0: धन्यवाद जी,
1: यू
0: तुसी
1: जस्सी जी,
0: टाइम
1: जुड़न दे
0: दिता।
1: लई, सांझ पाउन दे लई, विचारां दे लई, थैंक यू, शुक्रिया, सत श्री अकाल जी। जी दोस्तों, इस जी अपने नाल मलेरकोटला तो जस्सी जी जुड़े सन, ते गल्लां बातां अपनियां सांझियां करके गए ने, लाइनां तुहाडे लई भी खुल्लियां ने दोस्तों, ते शम्मी जी फुर

वेखो तुसी साका जल्ले आदे बागदा होया सी जुल्मे उत्थे खूनी रागदा ऊधम जहे जोदे उड़वा।

कली बैठी हमें लेके आसार, एक बारी मिल सजना। जिंद अपनी मैं दीती है गवा, एक बारी मिल सजना। झूठ अंग साक सब झूठा संसारे, झूठा संसारे। रब नू विसार के झूठे नल कीता प्यार वे, झूठे नल कीता प्यार वे। रहियां खोटियां ते सच्चियां सुना, एक बारी मिल सजना। जिंद अपनी मैं दीती है गवा, एक बारी मिल सजना। काल दा निशाना मेरे सिरे उत्ते वजना, सिरे उत्ते वजना। खड़े है जेड़ा उने एक दिन पुजना, एक दिन पुजना। एक बार

हर एक मंजर बिना बोले जो तू कहता उसे सुनता ही रहता हूँ। लिखे हैं मन ने बड़े यतन से तेरी महिमा में कुछ नगमे, सुने तुमने भी इस मन से जो तुमने ही लिखाए हैं। लिखे हैं मन ने पहाड़ों से निकल कर जल नदी कहती मेरे संग चल, चले हैं सब

बड़े यतन से तेरी महिमा मैं कुछ नगमे सुने, तुमने भी इस मन से जो तुमने ही लिखाए हैं, लिखे जो मन ने।

0: सत श्रीकाल दोस्तों, प्रोग्राम सिक्ख्या ते रुजगार लैके मैं समरदीप सिंह शमी तुहाडी सेवा च हाजिर हाँ। और सिक्ख्या ते रुजगार दोनों ही शब्द जिहड़े ने ओह साडी जिंदगी च बहुत अहम ने, और जिवें साहां दी महत्ता साडे वास्ते है, उसे तरह ही दोनों शब्द जिहड़े है आउंदे जांदे साह वांग साडी जिंदगी च रोल प्ले करदे आ। इस करके ये कहा जाता है कि चाहे वो तुहाडी पढ़ाई लिखाई का ट्रैक है, चाहे वो तुहाडी किते की चोण, वो बहुत ही सोच समझ के सानू जिहड़ा है उहदी करनी चाहिए है, दूर अंदेशी रखनी चाहिए है। ये एक बहुत ही अहम विषय है कि किवें आपां अपने किते दी जिंदगी दी चोण करनी है और किवें आपां उहनूं आपां सुपने जिहड़े सच करने है। और मैनूं बड़ी खुशी है स्वागत करदिआं अपने स्टूडियो दे विच डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल जी, IAS SDM दसूहा जी, उन्हां दा साडे स्टूडियो च पधारण ते जिहड़े अज साडे नाल सिक्ख्या ते रुजगार दे विच विशेष तौर ते गल्लबात करन लई पहुंचे ने। बहुत बहुत स्वागत है सर तुहाडा।
1: थैंक
0: तो
1: यू शमी जी।
0: सर, जिवें आपां आम तौर ते गल्लां करदे हां कि पेरेंट्स चिंतित रहिंदे आ बच्चिआं लई कि उह किवें आपणे बच्चे नूं सही दिशा ही नहीं लभदी कि आह साडा बच्चा साडे कहिणे च ही नहीं हैगा जी, दसो इहनूं आपां की समझाइए। आपां बधेरा मता मारदे हां जी, तुसीं पढ़ लिख के कुछ बण जाओ, लेकिन वो कुछ बन जो जो कुछ शब्द है इन्हों डिफाइन नहीं कर पाते, तो ये बच्चा बच्चे लिए भी कन्फ्यूजन है तो पेरेंट्स के लिए भी कन्फ्यूजन है। तो किमें ये जो किमें वो चोन कर सकते हैं वधिया, बच्चे को किमें गाइड कर।
1: पेरेंट्स का चिंता करना बिल्कुल वाजिब है, बट एक गल मैं कहनी चाहवाँगा कि चिंता के नाल नाल कुछ एफर्ट्स भी पेरेंट्स वालों अपने बच्चे दे लाने बहुत जरूरी ने, खास करके अजकल के समय के विच। जे आपां सिर्फ चिंता करते रहेंगे कि साडा बच्चा कुछ कर नहीं रहा, साडा बच्चा स्कूल च पढ़ता नहीं है, साडे बच्चे नूं टीचर्स ध्यान नहीं देंदे, स्कूल च फैसिलिटीज नहीं है।

0: अपना एफर्ट देना, जिस तरह वो शेप कर दूगा बचपन दे विच, उसी तरह वो वधिया घड़ा जिहड़ा बाद च
1: बिल्कुल
0: बनूगा।
1: बिल्कुल
0: तो
1: सही
0: इस
1: कह रहे
0: करके पेरेंट्स नू, माता नू, पिता नू अपना स्कूल तो बाद जो टाइम है और जिन्ना ज़्यादा डेडिकेट करेंगे उन्ना उन्ना बच्चा आगे बढ़ के वधिया जिहड़ा है एक सिटीजन बन सकता है।
1: जी। बस वो जिहड़ा कुछ है उन्हों वो पहला अपने माइंड च भी उन्होंने क्लियर करना पैना है कि बनेगी। लेकिन कई बार आप ये देखते हैं जी कि जिहड़े पेरेंट्स आ मान लो वो जिंदगी च कुछ बनना चाहते सी, कुछ वही सेम कुछ कि वो डॉक्टर बनना चाहते सी मान लो, ते वो अपने बच्चों नू भी सोचते हैं कि इन्हां नू जरूर आपां ये बना देंगे, आपां तो बने नहीं, ते बच्चे का रुझान नहीं, वो देखते कि बच्चा की बनना चाहता है कि नहीं, ते उस हालात जिहड़े आ किस तरह के बन जाते हैं जदों बच्चे नू इदां आपां कहिंदे हां।
0: बच्चों के बीच आप फिल्मों में भी दिखाते हैं कि जो पैदा होता उदों ही एक टैग ला दिता जाता है कि इनू वड्डा हो गया मैं डॉक्टर बनाऊंगा। मे
1: हाँ
0: भी
1: जी हाँ
0: जिवें
1: जी
0: तुहाडी गल है कि उन्हें पेरेंट्स ने आप सोचा होना कि मैं डॉक्टर बनना चाहता सी या इंजीनियर बनना चाहता सी पर मैं बन नहीं सकिया, वो अपनी
1: बिल्कुल
0: आसा जी बच्चों के पैदा होंदे ही थोप देंगे कि इनू का वड्डा हो गया मैं डॉक्टर
1: कि
0: बनाना
1: कोई
0: है
1: हाँ जी हाँ
0: या
1: जी
0: इंजीनियर बनाना है। KG तो लैके, पहली तो लैके 10वीं तक वो उही टैग लैके कैरी करता बच्चा कि भाई मैं तो वड्डे होकर डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, ये पैदा होंदे ही या पहली क्लास से डिसाइड नहीं होंदा। कुछ इंटरेस्ट
1: जी
0: जड़े है बच्चे के डिवेलप होंदे हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के विच, जब
1: हाँ
0: मैथ
1: जी
0: चंगा है तो 8वीं 9वीं 10वीं च बंदा डिसाइड कर सकता है कि मैं इंजीनियरिंग लाइन में चला जावा। जे उदी सोशल स्टडीज़ या इस तरह आर्ट्स के सब्जेक्ट उन्होंने चंगे लगते हैं तो वो आर्ट्स वो जा सकता है, जो
1: जी
0: उन्होंने
1: जी
0: मेडिकल बायो के सब्जेक्ट चंगे लगते हैं तो वो मेडिकल लाइन चूज कर सकता है। बट
1: बिल्कुल
0: वो स्टेज आती है बच्चे के करियर 8th 9th 10th तक। अब पेरेंट्स का जो फर्ज है वो ये है कि 8वीं तक बच्चे नूं उस 8वीं तक लेके जाने लिए ग्रूम करे। ग्रूम
1: जी
0: किस
1: जी जी
0: तरह
1: जी
0: कर
1: हाँ
0: सकते हैं कि बच्चों
1: जी
0: के इंटरेस्ट नूं समझने की कोशिश करे, उन्होंने टाइम दे, उसकी दोस्ती किस किड़े बच्चों नाल उसकी दोस्ती हो रही है, वो की कर रहा है, किड़ी खेडां च उसका इंटरेस्ट है, स्कूल तो आउन तो बाद वो की करता है,
1: मॉनिटरिंग
0: उसके
1: तो होए
0: टीचर्स किस तरह मोनिटरिंग जो करेंगे 8वीं तक उन्होंने प्रिपेयर करेंगे, एक लॉन्च पैड देंगे
1: जी जी
0: 8वीं 9वीं तक, उस
1: बिल्कुल
0: तो बाद जो बच्चा अपने करियर के लिए टेक ऑफ कर सकता है। तो इस करके पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अपनी इच्छावान उन्होंने तो पूरी कराइए, पर ये नहीं कि जी मैं तो अज मेरा बच्चा होया तो मैं उन्होंने अपनी सारी इच्छावान इस तो पूरी करानी है। इट विल
1: जी
0: टेक
1: जी
0: टाइम, वो तुम आफ्टर 10 और 12 ईयर्स उससे कर सकते
1: मतलब लाल किला सीधा नहीं बनना, पहला बुनियादा पुटनियां
0: हो।
1: पैनगियां, नींह रखनियां पैनगियां,
0: बिल्कुल
1: फिर ही ताजमहल जां कुतुब मीनार कुछ बनणगे। तो
0: बिल्कुल
1: वाकई एक जदों चलो पेरेंट्स ने उन्होंने 9वीं 10वीं 9वीं 8वीं तक कोई भार नहीं पाया कि ठीक है बच्चा जो करता करन दो, एक गीत गाँव दो, नचता है, कुछ करता है, साइंस पढ़ता है, क्या बनता है, कुछ नहीं। लेकिन फिर वो अगे बच्चा पहुँच जाता है 9वीं 10वीं के बच्चे, वो एक बड़ा ही क्रिटिकल जहाँ पीरियड बच्चे लिए भी होंगे कि उदों विषया की चोन बहुत ही ज़्यादा तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो इंटरेस्ट शो करता है कि यस मैं मैथ विच बहुत गुड हाँ, जां मैनू कोई लिटरेचर अच्छा लग रहा है, जां कुछ अच्छा लग रहा है, उदों उहदे ट्रेट्स कुछ कुछ उभरने शुरू हो जाते हैं कि
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: अगे जाके की करने वाला है। उस वेले बच्चा जिहड़ा है ते टीचर है, बच्चा है ते अध्यापक, वो एक तरह चौरस्ते च खड़े होंदे है कि हुण आपां ने जे हुण नहीं सोचा फिर कुछ नहीं हो सकता,
0: बिल्कुल
1: ये पूरी जिंदगी का सवाल ही है। ये दो विशेष तौर पर क्लासा 9वीं 10वीं च इतने बच्चे नूं की ध्यान रखना चाहिए बच्चे दे लेवल ते, आपां जे सोचिए
0: बच्चे नूं इस स्टेज के उत्ते सपोर्ट ते मोटिवेशन दी बहुत ज़्यादा जरूरत होंदी है। कि कुछ गल्लां इस तरह दी होंदी है, उहदे चेंजेस शरीर च भी चेंजेस आ रहे होंगे, उसके माइंड भी वो
1: हाँ
0: शेप अप कर रहा होंगे कि मैं अगे की करना। इस वेले जे उन्होंने कम्युनिकेशन गैप आ जाए अपने पेरेंट्स नाल या इनफैक्ट कई बार टीचर्स नाल तां वो दे लिए बड़ा नुकसानदायक हो सकता है। इस करके पेरेंट्स नूं टीचर्स नूं चाहिए बच्चों नाल उस वेले अपना कम्युनिकेशन जिहड़ा वो चंगी तरह बना के रखन, उन्होंने सपोर्ट देन, उन्होंने मोटिवेशन देन। मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल दिंदा कि जदों असीं भी बच्चे होंदे सी, मैं मेरे भरा मेरे दोस्त, असीं नॉर्मली ये गल सुनते होंगे हैं कि टीचर्स या पेरेंट्स वेले कहते हैं कि ये तुहाडा जिहड़ी क्रिटिकल स्टेज है 8वीं 9वीं 10वीं की, तुसीं ये 2 3 साल जिहड़े बोर्ड की क्लासां पार कर लोगे,
1: बिल्कुल
0: हुण मेहनत कर लोगे, सारी उम्र तुसीं ऐश करोगे।
1: ये
0: जे
1: तो
0: हुण
1: गल
0: तुसीं ऐश कर ली 2 3 साल दे, सारी उम्र तुहानूं
1: है
0: मतलब दिहाड़ी करनी
1: फिर
0: पैनी
1: दिहाड़ी में
0: है,
1: पछतावा ही
0: फिर
1: रहेगा।
0: पछतावा रहना है।
1: हाँ जी हाँ
0: असीं
1: जी
0: सोचते हैं कि भाई बड़ी मतलब एक वधिया गल दसी है, असीं 2 साल मेहनत कर लेंदे हैं, 9वीं 10वीं
1: बिल्कुल
0: चलो चंगे नंबर आ जाते हैं,
1: बिल्कुल सही कह रहे
0: फिर जदों 11वीं च होंदे हैं टीचर बदल जाते हैं, पेरेंट्स तो चलो उही गल रिपीट करते रहते हैं कि ये 11वीं 12वीं होर तुसीं मेहनत कर लो,
1: हाँ
0: फिर
1: जी हाँ जी
0: सारी उम्र तुहाडे 60 साल जिहड़े
1: बिल्कुल
0: ऐश दे निकलणगे। असीं फिर सोच के मेहनत कर लेंदे हैं कि चलो 2 साल बोर्ड कर लेंदे हैं।